जोजो लपा नेपाल भाषा या ज्याजो नेपाल नेतृत्व सुनादेपी सकलसित दुनगलन से लसकुसा जी रश्मिला प्रजापति थनी से नुगो ला सुरुजला अलिनी नामी भाजु मेजपी ज्याजो नेपाल नापदुक छिंगेरा सुनादिन ज्याजो नेपाल स नेवा सुसम बुखत तेगु अलि नेवा मेते हाके गोजी पछि बिसन सुगु खजल यको यको बुखत दु सुबुख दुले रगा धाबले नगरपालिका यु बुखत दु अलि अथे हे विजय रत्न असम बडे बेको या त हंगो बुखत दु अलि अथे रञ्जना लिपि सिनेगु बुखदो यो को बुखदो ला जी छौ ढुंका मेगु बुखदते खला आथो बुख नका वई न घे जुया छुनी रासा गोबे उले तत रंगो ज्याख बुख जाय छिस मखला छुनी मखला तर छिस रंगो ज्याख मय चाहिँ बुख होइ छुनी व एक्सेसिव ख वा पत्र पत्रिका छिक पिस ज्याजो या ढुंका चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति छुय ह मह मला उखेन यो को ख पाई एजा छुन ज्याजो छिन या देसा थोंगनेल अफ छि जस्तै अनलाइन मिडिया स्ट्रीम आला मखला अनलाइन मिडिया सोया सपोज फर एग्जांपल छि नेवा अनलाइन न्यूज देया दुने नेवा अनलाइन पत्रिका अनछि सोया दिल लासा दप्ले को पाके स्वापु धाउ था दे मला स्वापु धाउ था से होना छि क्लिक यान दिल लासा अन कांटेक्ट याउ अन ईमेल अन नम्बर त दैनि अन चाहिँ छि वो ईमेल आईडी ले छि जे थगु बुख छोइ दिल अले वेक अप इन्डस को फोन न यान दिल सा अले छु चाहिँ न्यूज बाला को कभर छि खला वो चाहिँ अन फोन नम्बर न बेत गु दु अले अन ईमेल आईडी न दु एजा अठेना चाहिँ कबडी छ कुत यान दिस न्यूज सभा फोटो न छेमा न्यूज त चाहिँ बालाको कभर जे छि छुके छुया दिउ ख अन चाहिँ या माला कि मक्सा छिके गुलिन इमेल आईडी त अन चाहिँ छुया दि माला छ र यो को ज्या ख त जुया छनी तर व ज्या ख यो पटी बुख चाहिँ कम हे जक कभर जे ज्या जसा दक्ले नपाङ गो मेते मेढुङ्गा चाहिँ थोङ्यागो बुख त छसी कथा

ipatu gak nolos kusta jazo Nepali sa Nepali jazo chini na suna dila jazo sa ye mahanagar pali kaya chagu bukhate dila ye mahanagar ha twa twale sakipa motsab yai gujudo ये महानगरपालिका थोएवेगो असार 5 गते निसी 26 गते तक शुक्रबार व शनिबार सार्वजनिक था पार्क दवली व चुकचुके त्वा त्वाले सकिपा महोत्सव यागु जुगुदो महानगर छगो पत्रकार सम्मेलन यासे महोत्सव छि सार्वजनिक यागुदो महानगरिया कथ महोत्सव या उलेजा असार 5 गते खुला मञ्चे व 6 गते व्हीकल फ्री असन क्षेत्र सञ्चालन यागु जुगुदो नेपाली चलचित्र क्षेत्र विकास व विस्तार या त योगदान बिगु व नात्मक उद्योग्यात समुदाय आपस स्वयग उद्देश्य थुगु ज्याझो यातना गुदका महानगर धागुदो महोत्सव अन्तर्गत लघु चलचित्र नापन चलचित्र प्रदर्शन कला व रचनात्मक उद्योग सम्बन्धी संवाद सांस्कृतिक नापन सृजनात्मक ज्याझोले स्थानीय नस्ता बोज्या यातंगु ख चलचित्र प्रदर्शनी नीति एलडी स्क्रीन साउंड सिस्टम नापों क्यूरेटर या व्यवस्था महानगरीय संपदा लिसे पर्यटन विभाग व स्थानीय युवा तेसा व्यवस्थापन यायगु जुगुदु महानगर वैगुदि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नाप स्वाना थुगु ज्याझो या तेंगु ख महानगरीय प्रवक्ता नवीन मानन्धर पृथ्वीगु विज्ञप्ति त्वा त्वाले फिल्म महोत्सव महानगरियागु रचनात्मक शहर यात्रा प्रारम्भिक पलाजीगु दासे थुकी या त तालाकित संचार माध्यम चलचित्र कमी नाप सरकार वाला तेगु गुहालीजीगु भल्सा बेकल नेतना दिगु दु महानगरपालिका आठो विशेषणा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म दिन या लस्ता चाहिँ सोनाया थे बुझा खन्जुल आ अन चाहिँ आज सुबले नेपाली म नेवा भाय गुब्रे संकिपा खन्यु न सायद प्रदर्शन जिगु छ स्पेसिफाई यन्त गु मद या छ 800 चाहिँ नगु एक्सपीरियन्स जिगु जुल नपन संकिपा त एना क्यों अन विशेषणा चाहिँ इन्द्र जात्रा इले जनबाले हे चोपि अन जनबाले मछिन्द्र बहाल क्लब दया दुमला आवे कपी प्लस अले थे मिहालामी पवित्र कसा जु वेकनो वो क्लब है तो वेक अभी साथ है ना मिले जाए मेरे को ना यूज़ हम क्लब मिले जाए सही अन्न विभिन्न सांकी पाता किन्हीं को ना आदि वो प्रश्न ना जी फो कुम्भ के बिस्तर सही असार महीना बजट शरीर के तैयार को खाला रखा ना आसे जी फो तर अन्न लाज अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मॉड सब ना बस वागुर का खोज लो तर आयु इले आठो वाई वायु इले सही आओ शायद चुना चुने को कवर तैयार कि मुस्ताना एलडी स्क्रीन है ना प्रॉब्लम जी एना किन्हीं को बेवस्ता सही यागु दुजी स्वे गेजी खा आथों नक्तिनी दुई गते जुला असारिया पांच गते राबले थो शुक्रबार छह गते रही शनिबार शनिबार सिटी नखा ना सिटी नखा बारे में सोच सोच खलाय मास्टी वाला थोक सी सिटी नखा से बसे लिपा लाता मुलाय बिसे ऑन लगा दुजी आसे असारे ला वाला तर सिटी नखा लगा दाई जो चीनी वाते गु थागु है वो वातावरण दिवस मतलब सिटी नखा वाले जो लॉया गुलीना अन प्राकृतिक मुहान तदु सफाई गुदी अदगा दाई गु तुंथी अले लोहिती बुगाजा अयु चाहिँ सफाई गुदी तर आ थो विशेषना सहरी क्षेत्र स्वयो खसा थो थो लोहिती जेना छ लोहिती तल्ला लोहिती र खस नारा तर लोहिती लोहिती त न तस्को हे कम ज्याव नुगला लोहिती श्रोते मरे नुगला आ दक्षा चाहिँ कोइठंग क गाम या वो प्लास्टर या नाम ला धलान या ना एना छेन्दिने बलेला श्रोत दको सुनाव नुगला अले आ तुन्थी हाल न अठे ख तुन्थी न ल अबे उ तस्को मजि नुगला ए न सिम्बलाइज्ड रूप हे जो सा छु छु तुन्थी तदु ओ तुन्थी सफाई आगो ज्याजी गन गन तुन्थी वो प्राक्टिकल ज्यान यान छमदु अपडीसा एकदमै थो ये येलो महानगरपालिका शिवे पचतापको जस्तै येले न हामी मेगुन न वरा तदुनी पचतापा तपाउने अवस्थित अनजुल अले खोप जुल थिमि जुल मला अनयुप्ति थासे भन्नु बले चाहिँ वो तुन्थी सफाई अन्त चाहिँ वो लुज एस वे खनि होला अले उले जकम बको सिटी नगर आबे तसको सक्क वो नेउदि अले त आतुके सिग्निफिकेन्स यु खत छिस चाहिँ आ वो सिटी नगर कुनै पूजा यो सांस्कृतिक पक्ष त लुए जुल मेन चाहिँ वो नेउ खला आथौ गरे वो बारे महिना नेउदु एज आ ओके यु पति चाहिँ पति चाहिँ महत्व कम जुला थे जु मखला बारे महिना छिदिबा दुसा बा छिदा अनु थासु छ नि आफले न नेउ खन दिसा नाफा प्रलेला वो ने त कि सिट नगा बेमा कि भेवेमा सायद कि बुदि बेमा जु मखला 10 क नापा सब मथुरा से हामी जु कना दिबा नापा खे ने त खे छगलो खे ने त चाहिँ बुदि बेमा
मेवले साथी खेने वे मरु आसुले खेने मरु का खेने तस्कर मज़ा आ आठ है वो व्यावसायिक रूपां खाले ही मखने साउंड लेला वाले खेने मास्टर वे को ये प्यासुनी हो बुद्धि वाले से बुद्धि जुम्म समेत इसका बियां छगो अज मेव बिंदला बागा बागा ताना बियां ख्लाब ले संतान छम्म Lewile has a suit, John Madizula. Was John Madizuma was at the same talk in the Kimo, maybe in the Zabababa, the year after Toscana by Consulum, Motura Sammy, we call you quit on the Dungla. Love of Sedo, you Harari, the easy side we go. Yes, Ozago, Nivasamazo, Ali Asa Idomeji, commercialized Nivasamazi Dungla, Tivasco Dusashi, Aguno, Polygar, Nyawilena, Nif. ऐसा सीटी नखा, चीगो विशिष्ट चागुन नखा, अलेह तो नखले सही मेन रूपांसे नई गुड़ाई गुसे वो ये जुला, ऐसे आ सीटी नखा या सीट बिंदा, बिंदु ना बिसे ज़्यादा सजी, सफ़ुमिस्वेटेना